0: सोय। सूत क्यों कर रखिए सूत कवर सोय, नानक सूत के बिना उतर ज्ञान उतार तोय महला पहला।
1: मन का सूत लोभ है जेवा

सुचा गिर के उनको न पिट जाए सुचा हो के जिवे लगा पड़ सलो कोती जाए सट्या किसो लगा दुख अन्न देवता पानी देवता वैसंत्र देवता लून पंजवा पाया कृत ना हो पाक वित पापी सोतन गड्या थुका पंजा तत

गुण सारिंदी गुण सारी प्रभ पावा सच महल रह बैरागी आवण देता आवाणी नेताणी हर बिन क्यों पावे सुख महली नानक जेठ जाने तिस जैसी कर्म मिले गुण गहली किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मेलो राम चार कुंट दे दिस प्रमे थक आए प्रभ की शाम।

जल बिन शाख कुमलावती उपजै नाहीं दाम। हर नाहना मिलिए साजने कत पाइए विश्राम। जित कर हर कंतना प्रगटी पठ नगर से ग्राम। श्रब सिंगार तंबोल रस सण देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहोणिया मीत सजन सब जाम।

प्रभ जिसका निचल ताम। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिखाही। माया मोह परम पै भूले, सुत द्वारा स्यों प्रीत लगाई।

काल मूरत अजुनी सैमं गुर प्रसाद हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे समरथ अगम पूरन मोहे मया तार अंधकूप महापयान नानक पार उतार तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सहेले रखो राखन हार दयाला नानक करके गोले ज्ञान ध्यान कछ कर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत का अंचल लावो बिखम नदी जाहि तरनी दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ

परम सत्कार योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम।

होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। जे वडे आप ते वड़ तेरी दात, जैना दिना करके कीती रात। खसम सारे ते कम जात, नानक नावे बास नात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा। बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई। कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरदे मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमारी रह रास रहाओ। हर जन के बड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलें त्रिपता सहे, मिल संगत गुण प्रगास। जिना हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मान चितमहे उद्दम। जा आहर हर जियो प्रया, सैल पत्थर में जंत उपाए। ताका रिजक आगे कर तरिया, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बैंता, कोई ना किसकी तरिया। सिर से रिजक समाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करया। उड़े उड़ आवे सै कौसा, तिस पाछे बचरे छरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा बरिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा बरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर गम्मा गम्मा पारा। सब ते आवहें सब ते आवहें तुद जी, हर सच्चे सृजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर ते आवहो संतो जी, सब दुख विसारन हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घड़ घड़ अंतर सर्व नरंतर जी, हर एक को पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बढ़ाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना। जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर दयावहें हर दयावहें तुद जी, से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त पाए
जैनो हरते आया जी तेन तूटी जमकी फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापहें जपहें बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमर शास्त्र जी कर क्रिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुदे आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुदे आपे सृष्ट सब पाई जी तुदे आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो भावे सोई थीसी जो तू दहें सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिस नौ कृपा करहें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुदे आप विछोड़या आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछोड़या संजोगी मेल जिस नौ तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम सुमाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद में दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखे हैं जाने हैं सोए जन नान गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ है भाई ले निवासा पानी पावक तिन्हें किया पंक जो महो पग नहीं चले हम देखा तहें डूबी अले मानव एक ना चेतस मूड मना हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवंत नानक तिनकी शरणा जैन तू ना ही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुक दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा किते ना काम मेल सा संगत भज केवल नाम संज्ञा लाग भवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो जप तप संजम धर्म ना कमाया

शरण पर की रखो हो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जाने आहर राया, कोहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी क्रोहा दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो, आप हाथ दे मुहे बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सवेरन को आय संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवरना ध्याऊं, जो वर चहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखा मारे तारी है, चुन चुन शतर हमारे मारी है, आभाद मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पछा, श्रीअस्तु जो करिहो रक्षा, राख लियो मोहे राखण हारे, साहिब संसहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजो अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सलोक सवारा, नमस्कार हैं तहें हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव देंत जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चिंटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए दे दुखी, सुखवाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पढ़ पढ़ की जाने, जाव उदकर्क करा करतारा, प्रजा तरत तव देह अपारा, जब आ कर्क कर तुहों कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत नर आलम, जानत भेद भेद अर आलम, रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीर अनाद संभ, ताका मूड़ उचारत पिता, जाको भेव ना पावत बेदा, ताको कृपाहण अनुमानत, महामूड़ कछ भेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव,
रंकार का चीनत नह पिब आप आपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जय पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा इकै रूपे अनुपसरूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंड जेरा से तज कीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहों फूल राजा हवै बैठा कहों सिमट पहयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दखाए अचंब आजुगा स्वरूप स्वयंप अब रक्षा मेरी तुम करो सिखियो वार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पत्ता शुक्ल मलेच करो रणगाता जे आस तो जे तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताकि काल निकट नह ऐह रक्षा हुए ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तान जहे न हरियो ताकि ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध घर मोसव होई दुष्ट शाह शवाय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसती ताहें ओभारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओ बारी सरठ मोह सहाई दुष्ट दोख दे ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओ बारी सरठ मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुम्हारे तब ते को आंख तर नहीं आने ओ राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहे हम एक ना जाने ओ श्री अस्पान कृपा तुमरी कर

दिखे गए हो तोहरो द्वार बहीं गहे की लाज अस गोविंदास तोहार सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहरो द्वार बहीं गहे की लाज अस गोविंदास तोहार। राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता वाया सहि सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया इमन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कर सब सवारना सवना गल्ला सम्रत स्वामी सो क्यों मनो वसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देहें सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा सचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वसिया जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ एह वड़ियाइया कह नानक सुनो संत हो शबद धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा धारो वाजे पंशव तित घर सुभागे घर सुभागे शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तें सुख होआ तित कर अन्न हद बाजे आनंद सुनहो बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर भूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्न हद तूरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर भूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्न हद तुरे मंदामणि महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो
अमृतिना ठाकुर का भयो जिसका सबसे अधारो जेको खावे जेको पुंचै तिसका होए उदारो एह बस तजी नहें जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिय।

0: मा तन मन थी वे हरे आ तरस पया मिहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: ठाकुर तुम पहर जियो पिंड साक तुम मात पिता हम तुमरी कृपा में कोई न जाने ऊचे ते ऊच सगल समग्री तुमरे तुम ते हो सो तुमरी गत मित नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती।

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। नानक सोई दिन सुहावड़ा, जित प्रवयावे चित्त, जित दिन विसरे पार ब्रह्म। फिट पलेरी रुत, विसया चसया कणियां पैरां। तिथि बारी मां होआ, सूरज एको रुत अनेक। नानक करते के वेश, महादेव समूरत भले जिसको नदर करे। नानक मंगे दर्शदान, कृपा करो हरे। दर्शन प्यासी दिन से रात, चितमो अन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। हर जेठ जोड़ंदा लोड़ी है, जिस अग सब निवन। हर सज्जन दामन लग्या, किसे न देई बन। हर जेठ जोड़ंदा लोड़ी है, जिस अग्गे सब निवन। हर सज्जन दामन लग्या, किसे न देई बन। माणक मोती नाम प्रभ, उन लगे नाई सन। रंग सबे नारायण, जेते मन पावन। जो हर लोड़े सो करे, सोई जी करन। जो प्रभ कीते अपने, से कहिए तन। अपन लिया जे मिले, बिछड़ क्यों रोवन। साधु संग प्राप्ते, नानक रंग मानन। हर जे रंगीला तिस धनी, जिसके भाग मथन। साधु संग प्राप्ते, नानक रंग मानन। हर जे रंगीला तिस धनी, जिसके भाग मथन। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

आप जी करो कृपा अपनी अमृतमयी बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो, हुक्म अनुसार जीवन ज्यौन दी समर्था बख्शो, अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी, सिख पढ़ दे

दर्शन पर से गुरु कहे जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।

काज सवारी रहो। यह संसार विकार संसे मैं तरियो, ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पिया वै हो रस कथ कथा तिन जानी। जा को आई सोई बिहाज हो हर गुरते मन है बसेरा, निज कर महल पाव हो सुख सहज बहुर न हो गो फेरा।

0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वै अकाल मूरत अजुनी सह पंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका ना श्लोक पी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवा जिन मानसते देवते किए करतन लगी वार महला दूजा
1: जेसो चंदोग वह सुर

0: सच त्यान सच जो मर जमै सो कच नी कच महला पहला
1: वड्डी वडाई जा वड्डा ना वड्डी वडाई जा सचने आ।

पै पंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बकता कुल सोडी गुर रामदास तन।

अलख अपार गुरु सूर शब्द हो मैं निवारे पंचाहर निज हले सुन सहज निज कर सहारे हर नाम लाग जग उजरे सतगुर हृदय बसायो गुर अर्ज

तेज पूमंडल छायो, पारस पर्स पर्स पर्स गुरु गुरु कहायो। पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन्मुख रहो।

वैस सुख समंदी नूर अरसो कुरसो चटिए तुद जिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सजन सचा पातशाह सिरसाह दे साहो जिस पास बैठया सो

0: श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड़ी लदिए पढ़ पढ़ परिये सा पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ गड़िए खा पढ़िए जेते बरस बरस पढ़ी जेते मास पढ़िए जेते यार जान पढ़िए जेते सास नानक लेखे एक गल और हो मैं चखना चाख महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बो तीर्थ भव्या ते तो लव्या बो भेख किया।